0: यार ठिकाने का तौर पर खिलाते इंग्लिश
1: बाला बाला अंशान
0: पुस्ता सुनने तूलार अंश अंशी बाला बलता सूल थलकिंग हाल बल्ला उर्जित लात कांगिन सोनगार अंशी हलस्ते तूलार कोश कोशिंग होना बलवान अंशिंदर सोलगान शुई और बस्तिक अंशने दत्तन कुम्मिंग यंबिया ओजितो एरसासा ओइंगाते यथा इन इमं बलवल्ता अंशिंदरी खजवेंदी तिमी ओतक्सन्नु वे हायरितवा उद्रे बल्छ सांजिन शौई हुरा दिल्ला शुई हराता सांजित्लिया हुईशिन शक्व इरेतलेन आतायन उतर इह माला गच उचो इरती इरहले कुंग्मिंग अंशी बुल्कागा थेस्तन बलोस पास हुदलू दे बेगा